प्रकृति आत्र सूर्या प्रेम अनुरूपिता तत्रादो सुष्ठु वैशिष्ट्यम मश्या कथयतुम स्फुटम लक्षणं क्रियते भक्ति रुत्तमाया सतानुमतम अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञानकर्मार्जनावृतम